सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कबहू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उठान लैके मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु मेरे नाल मेरा साथ दे रहे हैं।

0: SNS lawyers nu call karo 416-605-2000.
1: जे तुसी भी करना चाहुंदे हो अपना खुद दा रेडियो प्रोग्राम ता आज ही सानू कॉल करो 647-504-1557.

0: Radio. Good for your body, mind, and soul.
1: आइए आपका स्वागत है हर संसार में और जुड़िए आत्मा परमात्मा घरेलू दुनिया और बाहर की दुनिया के साथ।
2: आपको अपने आंखें चेक करवानी है, आई एग्जाम, आई ग्लासेस, कॉन्टेक्ट लेंसेस, सन ग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में, मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में, ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-450-7333 पर कॉल कीजिए। 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
3: रात लिए तेरे रखने

0: बचन पैन स्वामी गुण गावत नानक आलाप।
1: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की।

सप्ताशोनाभिं पातु नभो मणिः द्वादशात्मा कटिं पातु सविता पातु सत्तिनी ऊरु पातु सुरश्रेष्ठो जानुनी पातु भास्करः जङ्घे मे पातु मातालो गुल्फौ पातु तिशां पतिः पादौ पातु दिलमणिः पातु मित्रोऽखिलं वपुः आदित्यकवचं पुण्यम् अभेद्य वच्छ सन्निभम्।

श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम, या अली मदद। और आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है, लेबर डे वीकेंड है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं बच्चों को तैयार कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए। पहली बार छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी पहली बार स्कूल जाएंगे, और फिर जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी जा रहे हैं सभी को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जो बच्चे हैं पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने लिए भी जिंदगी को बेहतर बनाएं और खूबसूरत बनाएं, और अपने ड्रीम्स को पूरा करें, जो भी उनके लाइफ के ड्रीम हो तो उनको खुशियाँ मिले। इसी प्रार्थना के साथ हम प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हैमिल्टन मंदिर में सरस्वती पूजा होने वाली है, तो आप अपने बच्चों को लेकर के जाइएगा। वहाँ पे कथा भी पूरा एक हफ्ता चलने वाली है, तो आप जरूर जाइएगा। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हैं, अपना टीवी एकदम बढ़िया लेके आना चाहते हो, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के पास आपके लिए बहुत बढ़िया सामान है, और फिर आपके लिए बहुत बढ़िया उनके पास आउटडोर आपको फर्नीचर चाहिए, या फिर आपने बहुत बढ़िया सा अपने लिए बारबेक्यू लेके देना है, तो ये सारा सामान आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। तो ये सारा कुछ आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे मिलता है। एक लोकेशन उनकी इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप और जानकारी के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप 799-00-45 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। हैमिल्टन वासियों, कि तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਜਟ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਸਿਰਫ $5,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $1,00,000 ਤੱਕ, ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 5.49% ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਸਟਮਰਸ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਿਲਟਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਸੀਬਲ ਰੇਟ ਅਤੇ ਡੀਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। 4 ਟਾਇਰ ਦਾ ਸੈੱਟ ਸਿਰਫ 299 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, AM530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ AM530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ $500 ਆਫ। ਜੀ ਹਾਂ, $500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ। ਕਾਲ ਕਰੋ 365-384-3840, 365-384-3840। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, 365-384-3840, 365-384-3840, BBT ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ, ਲੋਕਲ ਸਰਵਿਸ, ਗ੍ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਗ੍ਰੇਟ ਡੀਲਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੇ ਆਪਕਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਘਰ ਸੰਸਾਰ ਮੇਂ। ਤੋ ਯੇ ਜੋ BBT ਡੀਲਰ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਾਰ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈਮਿਲਟਨ ਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆ ਇਨਕੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਡੀਲ ਦੇਂਗੇ। तो हमारे प्रोग्राम को इन्होंने ज्वाइन किया है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए। HK मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और आपका सामान हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही ट्रक बुक कर लो 416-524-704, 416-524-4704। आपके लिए बहुत ही खुशी खबर है कि लंदन वालों के लिए आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो वहां पे खुल चुके हैं गौर रोड पे। और जानकारी के लिए मास्टर कोलिजन डिपो .com पे जाओ, और आपके लिए बढ़िया सर्विस देंगे। नई आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं। मास्टर कोलिजन डिपो वालों का बहुत सालों का तजर्बा है, बड़ा नाम है उनका।
तो अब आपके लिए अगर आपने बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ लेनी है, खाना ऑर्डर करना है, तो न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट आपके लिए ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है। और जानकारी के लिए 905-814-1703 पर कॉल करो, 905-814-1730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो खीर जो है वो बहुत सारे लोगों ने गाई है, जैसे चरखा बहुत सारे लोगों ने गाया है, खीर भी इसी तरह से बहुत सारे लोगों ने गाई है। तो मैं आपको आशा सिंह मस्ताना ने जो लता जी ने गाई है, तो आशा सिंह मस्ताना ने जो खीर गाई है वो मैं आपको सुनाती हूँ। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल पंजाबी, जैसे रोमांटिक जो रोमांटिक किस्म का जो गाना है, तो किसी का रोमांस सफल नहीं हुआ था, उस जमाने की बात है, इट्स मिथ काइंड ऑफ स्टोरी। तो लेट्स गो टू दिस।

तो जैसे वारिस शाह की आपने सुनी, आपको ये प्रोग्राम आ रहा होगा और आप की बढ़िया बढ़िया गीत सुनाऊंगी। तो अब अगर आप अपने घर में बढ़िया फर्नीचर लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना है, लेटेस्ट किचन गैजेट चाहिए, आपने अपने घर में बारबेक्यू लेके आना है, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वास में है। और जानकारी के लिए उनकी मंथली वीकली स्पेशल देखने के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर अपने ऑर्डर बुक करिए 905-799-0045-799-0045। आपने छोटी सी किचनेट सेटअप करवानी है तो वो भी आपको वहीं पे वो सेटअप करके देते हैं। तो ये है आपके लिए जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड में मौजूद है, दूसरी लोकेशन गांव में, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, उनकी स्पेशल देखो, फिर अपना ऑर्डर बुक करो 905-799-0045। अब अगर आपने मूविंग करना है तो आपके लिए एचके मूवर्स कनाडा घर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लो 905-799-0045-9705 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो अब अगर आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको आपने किसी किस्म का भी आपको बढ़िया सा आपने अपने घर में किसी किस्म की भी आपको फर्नीचर लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स के पास जाइए। अब अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपको बड़ी खुशी की खबर है कि लंदन में खुल चुके हैं वो रोड पे। तो आप और जानकारी के लिए मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाइए, फिर उनको आप कॉल कर सकते हो। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। ये जो फोक म्यूजिक है एक कल्चरल चीज है, उसमें तो उसमें हमेशा हमें एक गाए जाते हैं वो ऐसा ही एक अपना एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए ये गाने गाए जाते हैं। तो हमारे लिए विदेशों में अपने मुल्क का अपना म्यूजिक सुनते हुए और फिर उस एटमॉस्फेयर में फिर चले जाना, थोड़ी देर के लिए झलक उसकी मिल जाती है हमें। तो हम इन लोगों का जिन्होंने इस तरह के गाने गाए हैं और गाने गा करके हमारे लिए अपने लिए छोड़ गए हैं, तो उनका जब तक ये धरती आसमान है तब तक हम उनको सुनते रहेंगे, सराहते रहेंगे। क्या ख्याल है, ऐसा ही है ना? तो अभी मैंने आपके लिए और भी बहुत ही सुंदर सा गाना चुना है, जमला जट, लालचंद जमला जट का। तो ये भी बहुत सारे गीत गाए हैं जमला जट जी ने। सो आपको किस तरह का गीत आपको सुनाया जाए, तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने अपने घर में फ्रिज सो वाशर ड्रायर लेना है तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स ले जाइए। मूविंग होनी है तो आप जा सकते हो। जी हाँ, तो अगर मूव करना है तो इसके मूवर 416-524-7404। अब अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, बेस्ट ट्रक रिपेयर टायर सेंटर 905-625-0055 पर कॉल कर सकते हैं। तो अब आपको अभी उनका गाना ही आपके लिए सुनाऊंगी, तो लेट्स गो विद दिस वेरी ब्यूटीफुल पंजाबी सॉन्ग। आज का प्रोग्राम हमने पंजाबी में ही आपको सुनाना है। तो कृष्ण जन्माष्टमी है, तो अभी पूरा वीकेंड ही लोग जाएंगे, कृष्ण कन्हैया का जन्म हुआ है तो उनको झूला जलाएंगे, बहुत ही प्यारा वातावरण मंदिरों में बना हुआ है। तो कई मंदिर शायद आज मनाएंगे आधी रात को कृष्ण जन्माष्टमी, तो सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आइए सुनिए ये पंजाबी गीत।
1: जंगल दे विच पुआल।

0: लगतिया नाम कई दैवो, नाम कई दैवो लगतिया नाम कई दैवो।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, तो आपको रमता जी का भी जरूर सुनाएंगे। रमता जी ने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, ये रमता मीमा बिच वही आपको सुनाऊंगी। पर पहले उससे शमशाद बेगम जी का बहुत ही प्यारा सा गीत मैंने आपके लिए चुना है, वो सुनाऊंगी। पर पहले आपको बता दें कि अगर आपने कोलिजन का काम करवाना है, लंदन में रहते हो आसपास के, आपके लिए ये वो मास्टर कोलिजन रुकू वाले हैं, तो आपकी कार ले जैसा बना देंगे, तो आप mastercollisiondepot.com पर जाइए और उनकी सेवाएं लीजिए। अब आपके लिए ये जो कृष्ण भैया का जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया है इस वीकेंड में, लॉन्ग वीकेंड में, तो आपको सभी को जन्माष्टमी की, कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। और जो नन्हे मुन्ने बच्चे स्कूल जाने वाले हैं वो भी कृष्ण भैया का ही रूप होते हैं, तो उनको हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं स्कूल शुरू करने के लिए, और यूनिवर्सिटी में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं हम उनको भेजते हैं। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

मैं कोशिश करती हूँ मतलब इस गीत आपको सुनाने की, क्योंकि ये जो गाने हैं एवरग्रीन सॉन्ग हैं और आपका जो दिल बहलाने वाली बात होती है, ये गाने हमेशा आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपका मनोरंजन करती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी जो है, कृष्ण जन्माष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इट इज मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द एट्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड कृष्णा वॉज बोर्न एट मिडनाइट इन द प्रिजन इन मथुरा टू देवकी, और वहाँ पे जो कहानियाँ बनाई गई हैं वो मैं सोचती हूँ कि वो लोग बड़े किस्मत वाले हैं इंडिया में, जिनको मथुरा जा कर के, वृंदावन जा कर के, उनकी जन्मभूमि पर जा कर के ये जो त्योहार है वो मनाने का मौका मिलता है, एंजॉय करने का। यहाँ कनाडा में कम नहीं, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से सभी मंदिरों में, बड़े मंदिरों को सजाया जाता है, कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल इट सिंबलाइजेस कृष्णा वाज बोर्न टू एंड द टायरनी ऑफ हिज क्रूअल अंकल मामा किंग कंसा। तो ये है कि एज द एट्थ अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु He descended to earth to restore righteousness, truth and cosmic balance. ये दुनिया को एकदम संभाला उन्होंने आकर के, तो लोगों में शांति सुख की लहर छा गई। तो ये जो भगवान है, किसी भी रूप में, चाहे जीसस के रूप में, किसी भी रूप में जन्म लेते हैं, अपनी ये जो जब इंसानियत के ऊपर बहुत अत्याचार होने लगते हैं तो उनको, लोगों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इस धरती पर आते हैं ये देखा। तो आइए अब आपको एक और बहुत ही प्यारा सा गीत सुनाती हूँ। जैसे मैंने कहा कि रामता का जो गीत है ना, तो उसका जो पंजाबी का है रामता, तो वो गाना मैं थोड़ा सुनानी है। तो आई एम योर होस्ट मीरा शर्मा और आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर से था। तो उम्मीद रखती हूँ कि आपको आज पसंद आएंगे और साथ में आपको ये भी, साथ ही हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे हाजिर हो जाएंगे। तो हम आपको बहुत प्यारे प्यारे बढ़िया बढ़िया पंजाबी के गीत सुनाएंगे, समय हुआ चाहता है। मैं यही आपसे रात को किसी हाजिर

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

वाकया बात है, सो खुश बंदे यानू हले तू तो मिलिया ही नहीं। सो असल खुशी जो है हले तो असी जानते ही नहीं हाँ, असी बस कामयाबी नू ही खुशी दसते हाँ। पर खुशी सिर्फ एक सैक्टर च नहीं होंगी, खुशी तो थोड़ी सेहत जदों सब तो वध नंबर वन है तो वह भी खुशी है, जदों थोड़े रिश्ते चंगे ने वह भी खुशी है, जदों थोड़ा करियर अगे वध रहा वह भी खुशी है, तो जदों फिर जो रज के तुसी अपनी मन दियां चीज़ां जो ने वह ले सकते हो तो फिर वह भी खुशी है। सो खुशी हर एक सैक्टर के विच होवे तो फिर उही असल खुशी है। सो कहिंदे ने कि हौसला जो है कदे भी अपना ना टुटन देवो, क्योंकि जीवन दे विच जिंदगी दे विच कुछ क दिन जो है आप कह सकते हैं कि अज का दिन जो है वह चंगा नहीं निकलिया, चलो कुछ क दिन बुरे हो सकते हैं, कुछ क दिन औखा टाइम जो है वह हो सकता है, पर इहदा मतलब यह नहीं भी थोड़ी सारी जिंदगी जो है उही बुरी है। सो हर पल जो है हर चीज़ दे विच, हर निक्की मोटी चीज़ दे विच जेकर असी सोच लिए भी सानू परमात्मा ने यह तो दिता है, तो जो वह शुकराने वाली फीलिंग आ गई, जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आ गई, तो फिर अपने आप ही फिर जो है एक हिम्मत मन दे विच जरूर आती है, क्योंकि कुछ ना कुछ चंगा तो परमात्मा ने सब नू बिल्कुल दिता ही है। सो जी प्रोग्राम पंजाबी लहरां दे नाल इस वेले तुसी जो जुड़े हुए हो तो समा 7:07 का, तो सूरज जो है अपनियां किरणां दे नाल जो रोशनी जो रंगां नू हर पासे जो है वह भर रहा है, बहुत ही प्यारी सवेर, तो 17 डिग्री इस वेले दे तापमान ने। सो कह सकते हैं कि सवेरे सैर ते तुसी इस वेले हो, सैर ते जा रहे हो, तो बहुत ही परफेक्ट वैदर है, बहुत ही सोहना मौसम है, प्लेजेंट मौसम है जो बाहर होके तुसी आना, तो दिन भर अज जी मौसम प्लेजेंट ही रहना। सो रज के अज की छुट्टी बच्चों नाल मनाउणी, 3 छुट्टियां ने, तो इन 3 छुट्टियां तो बाद जो स्कूल दे विच वापसी है, तो कई ने तो शॉपिंग भी फिर इन्होंने दिनों दे विच करनी है, बैक टू स्कूल वाली शॉपिंग जो है बच्चों नू बहुत ही चाज उस गल दा रहिंदा है कि मैं अजिहा बैग लैना, मैं अजिही बॉटल लैनी है या फिर ये कपड़े मैं लैने ने। सो ये समा जो है वह लोंग वीकेंड के रूप के लेबर डे वीकेंड के रूप के जो है सानू मिले है। सो उम्मीद करते हैं तुसी रज के जो है जरूर इस नू हंडाओगे। सो इस दे नाल मैं थानू जानकारी यह जरूर दे देवां जी, जिथे हर निक्की मोटी खुशी जो है वह जिंदगी दे विच जरूरी हुंदी है, उत्थे जरूरी यह भी है कि असी अपने कल की तैयारी भी बिल्कुल कर लिए। सो टॉप चॉइस इंश्योरेंस तो मैं हरप्रीत सैनी जी का नंबर इस दे विच थानू जरूर दे देवां, जो कि इंश्योरेंस एडवाइजर जो बहुत सारियां फैमिलीज़ नू हुण तक अपने तजुर्बे दे नाल हैल्प कर चुके ने, जो कि फाइनैंशियल प्लानिंग दियां सेवावां भी दिंदे ने। सो तुसी एक अच्छी पॉलिसी अपने लिए या फिर अपने परिवार दे जो भले दे लिए तुसी चाहुंदे हो कि कल कुछ भी होवे कि मेरा परिवार जो है वह सेफ रहे, वह जो फाइनैंस पक्षों जो है घट्टो घट कोई मुश्किल ना आवे, ते लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनैस इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, जो तुम आप काम करते हो, जो सैल्फ इंपलॉयड हो, तो फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस तो क्रिटिकल इलनैस इंश्योरेंस भी बहुत ही जरूरी है। तो जो साढ़े व्डे सुपर वीजा तो आते हैं तो बहुत ही मैंडेटोरी है कि थोड़े को इंश्योरेंस जरूर होवे, विस्टर वीज़ा लिए भी थोड़े को इंश्योरेंस होनी जरूरी है, तो अच्छे तुसी हेल्थ डेंटल ते इन्वेस्टमेंट प्लान्स बारे भी जानकारी चाहते हो तो तुसी हरप्रीत सैनी जी नू आके मिलो, इन्हां दे नाल तुसी पूरी जो अपनी प्लानिंग है डिस्कस करो। तो नंबर 416-817-6500 जी हरप्रीत सैनी जी दे लई इह नंबर है, तुसी नोट कर लो, संपर्क करो, ते प्रोग्राम पंजाबी लहरां दा हवाला तुसी इन्हां नूं जरूर देना है तां जो कि अच्छी पॉलिसी जो है वह थानू जो मिले उत्थे अच्छी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग दे विच भी इह थोड़ी पूरी मदद जो है वह करन, क्योंकि कई बार असीं सोचते हैं कि सानू हुण इस वेले प्लानिंग दी की लोड़ है कि पहला असीं उस मुकाम तक पहुँच जाइए, उस शिखर तक पहुँच जाइए जिथे साढ़े कोल फिर सेविंग अच्छी होवे, फिर असी सोचांगे कि प्लानिंग हुण अगे की करनी है। पर हर समा जो है वह चंगा समा ही है प्लानिंग दे लई, हर समा जो है वह इंश्योरेंस लैण दे लई चंगा समा ही है। सो जेकर पुछिए कि इंश्योरेंस लई बेस्ट समा लैण दा की है, सो वह कल सी,
ਉਹ ਯੈਸਟਰਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 416-817-6500 ਜੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਤੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਲੈ ਲਈਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਫੰਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੀਟਰੀਟ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਭੱਜ ਨੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਕਈ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਤਾਂ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਨਿਕ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ CEO ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ

तेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोई, करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाडी अपनी संतोष कौर ते तुहाडा सारिआं दा स्वागत है तुहाडे ही अपने शो रेडियो आवाज़ जी ते तुहाडा ते साडा साथ इंज ही बना रहेगा 1 बजे तक ते तुसी सुनदे रहो साडा शो रेडियो आवाज़।

0: वाह जी वाह, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है गाया, जसमीत जी का NRI एंथम। असी बहुत एंथमा सुनिया सी, NRI दी नहीं सुनी सी, सो अज तो बहुत वधिया सॉन्ग हैगा। और एक्चुअल इन्होंने रियल लाइफ स्ट्रगल दिखाई आ, सो स्ट्रगल तो डरना नहीं है हर बंदे ने। मैनू लगता है पंकज जी 80% लोगों ने जदों इस कंट्री 'च असी आए हाँ तो असी अपनी लाइफ बेसमेंट्स तो शुरू की आ। सो बेसमेंट साडा पहला घर हुंदा है इत्थे। मोस्टली मैं नहीं कहंदी 100% बट 80% लोकां दी लाइफ बेसमेंट तो शुरू हुंदी आ। और 80% लोकां दी जॉब भी पैकिंग जॉब या इदां दीआं वेयरहाउस जॉब्स हुंदीआं। सो इस कंट्री ने सानूं बहुत कुछ दित्ता ते बहुत कुछ सिखाया कि कोई काम छोटा या कोई काम वड्डा नहीं हुंदा। सो ओह काम कर करके असीं अज इत्थे तक पहुंचे हां। सो सारिआं ने मेहनत करदे रहना, मेहनत नहीं छड्डनी। हांजी पंकज जी, तुसीं इशारे कर रहे हो, कुछ बोलना चाहुंदे हो?
1: हां जी हां जी, वो मैं आपके मैं टीचर की क्लास में उतना एक बच्चा मैडम
0: कहने ये स्टूडेंट मुझे बहुत तंग करता है। सो पंकज जी दी आवाज आ रही है, पंकज जी दे कुछ प्यारे प्यारे लिसनर्स हैगे, ऑलवेज पंकज जी नूं मिस करदे आ। सो तुसीं सारे दसो पंकज जी दी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?
1: मेरे जो हिंदी लिसनर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा, सर के स्टाइल में पूछना, मैं पूछता हूँ भाइयों बहनों, मेरी आवाज़ आपकी तरफ पहुँच रही है कि नहीं है? तो करना क्या है जी, आप 905-673-3337 पे आप कॉल करके हमें बताइए मेरी आवाज़ आपको आ रही है। 905-673-3337 पे कॉल करके ज़रूर बोलिए। संतोष जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता था कि जैसे मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यू सुने हैं
0: जी,
1: मैंने काफी सारे इंटरव्यू सुने, जैसे जसमीत जी ने एंथम लिखा है ना
0: जी,
1: तो हर एक का स्ट्रगल मतलब काफी डिफरेंट है और काफी अमेजिंग है
0: जी। बिल्कुल,
1: मतलब किसी के मैं स्टोरी में उनका स्ट्रगल थोड़ा सा रहा है, जैसे 1 साल 2 साल, किसी का स्ट्रगल 4 साल 5 साल रहा है
0: जी,
1: बट 6 साल है। बट लेकिन जो जब आप आपकी मंजिल तक पहुंच जाते हो ना
0: जी,
1: तो वो स्ट्रगल नहीं लगता,
0: वो
1: एक कहानी बन जाती है, एक याद बन जाती है।
0: बिल्कुल,
1: और वो एक इंग्लिश में कहते हैं चेरिशेबल मेमोरी,
0: या
1: वो कहते हैं मतलब सुनहरे अक्षरों में आपके दिमाग में वो छप जाता है, चलो मैंने इतने काम किए, इतनी मेहनत करी, वो करके मैं यहाँ पे पहुंचा, वो जो फिर सुकून जो मिलता है ना वो अलग ही है।
0: बिल्कुल सही है। सो बिल्कुल पंकज जी ने सही बोलिया, और तुसी भी सानू कॉल करके अपना सफर थोड़ा जिहा साडे नाल शेयर जरूर करो
1: जी जी।
0: इस शेयर करन नाल की हुंदा है, कुछ पर्सन्स अजे भी अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हैं, और कई बार कई सोचते हैं कि असीं ये केड़ा काम कर रहे हैं। उन्हां दी मोटिवेशन लई जिहड़े भी उस लाइफ दी स्टेज तो निकल के अगे वध चुके आ, मैं चाहवांगी एक बार रेडियो ते कॉल करके तुसीं आपदा सफर साडे नाल जरूर सांझा करो। जिवें मैं इस कंट्री च आई सीगी, पिछों असीं बहुत वधिया जॉब्स करदे आए सीगे, सो जदों नवें नवें आए ते मैनूं टिम होटल्स च जॉब मिली सी, और टिम होटल्स दी जॉब बहुत वधिया सीगी, मैनूं काफी कुछ सिखाया, बट महीने दे विच ही मैं क्लीन बोल्ड हो गई सी क्योंकि मेरे को 30 सैकेंड्स दे विच उन्हां दीआं ड्रिंक्स नहीं बनदीआं सी, सो मैं बहाना लगा के निकल गई। बट साडे उत्थे दे मैनेजर सारे बहुत नाइस सीगे, बट ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਟਿਲ ਐਂਡ ਅਨਲੈਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਫਸਟ ਈਅਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਸੋ ਮੇਰੀਆਂ 10 T4 ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੋਬਸ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੀ ਆ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਸੰਤੋਸ਼ 1 ਸਾਲ 'ਚ 10 ਜੋਬਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਯੈਸ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂ ਨੀਡ ਮਨੀ। ਸੋ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਆ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਖਾਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਕਿਰਨ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ? ਕਿਰਨ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿਰਨ ਜੀ,
1: ਹੈਲੋ।
0: ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ।
2: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।
0: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਦੀ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਵਾਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਚਾਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਪੂਰੀ ਬੂਸਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਵਾ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ?
1: ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮ ਫਿਰ ਸੇ ਟਰਾਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਕਿਰਨ ਜੀ, संतोष जी लगता है इनकी आवाज कुछ नहीं है, आई थिंक इनको
0: कॉल सो किरण जी तुसी दोबारा कॉल कर लो, थोड़ी आवाज नहीं आ रही है, किरण जी दोबारा कॉल कर लो। सो साडे नाल हुन साडे नेक्स्ट कॉलर है गया, वन ऑफ द फेवरेट पर्सनैलिटी जिन्हां नूं इंट्रोडक्शन दी कोई जरूरत नहीं हैगी है। सो ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसिस तो सुल्तान जी तुहाडा स्वागत है साडे शो ते, तुसी ऑन एयर हो।
3: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस दा मैसेज दवांगे क्योंकि परसेंट दा जिहड़ा है ओ टैरिफ लगन जा रहा, सो असीं अपने कस्टमर नूं इनफॉर्म कर रहे हैं कि जिहड़ा फ्रिज $1,000 का लै रहे सी 8 सितंबर तो बाद $1,300 का हो जाना, जिहड़ा वाशर एंड ड्रायर $2,000 का लै रहे सी जी ये 8 सितंबर तो बाद $2,600 का हो जाना, ते जिहड़ा फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल एज ऑफ टूडे $5,000 वाला $2,999 च असीं लैके दे रहे हैं ये 8 सितंबर तो बाद $3,899 का हो जाना। सो जेड़े भी कस्टमर 8 सितंबर तो पहले पहले 25% जेड़ा टैरिफ लग्या उदे तो बचना चाहुंदे ते आज दी प्राइस ते डिस्काउंट लेना चाहुंदे वो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकदे जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन अपलायंसेस .com साडी वैबसाइट है जी, ते टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर जे कला वाशर लेना है $1,000 वाला $599 का मिलेगा, $400 सेव करोगे, पर जे वाशर एंड ड्रायर का पेयर लवोगे तो $800 की सेविंग है क्योंकि $1,499 च तुहानू फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर मिल रहा जिहदी $2,200 प्राइस है, $1,499 का फ्री डिलीवर होएगा तो $1,499 छे महीने च तुसी पे करना, इनू साइड बाय साइड भी रख सकते जी, तो वाशर थले ड्रायर उपर स्टैक भी किया जा सकता है, जो स्टैक करोगे 27 इंच वाइड ते 76 इंच हाइट च तुहाडा वाशर ड्रायर स्टैक एंड इंस्टॉल हो जाएगा। बोवेड एंड चंकूजी ते है जी ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस, क्योंकि ये लेबर डे वीकेंड है, लोंग वीकेंड है, बैक टू स्कूल का वीकेंड है, तो बैक टू स्कूल दे विच असीं स्टूडेंट्स नूं ये ऑफर कर रहे हैं जी, जे तो उन्होंने ज्वाइंट अकोमोडेशन लेनी है तो 50 इंच का टीवी लगा सकते हैं सिर्फ $299 का, जे अपने बेडरूम लई 40 इंच टीवी चाहिए सिर्फ $199 का मिल जाएगा। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से बैक टू स्कूल स्पेशल सेल का फायदा बिग स्क्रीन टीवी खरीदने वाले भी ले सकते जी, 85 इंच का सोनी ब्रेविया मॉडल या सैमसंग एनी ऑफ वन ब्रांड तुसी सिलेक्ट कर सकते हो, $2,200 तो $1,599 का मिलेगा, $700 तुसी सेव करने हैं, जबकि 8 सितंबर तो बाद ये टीवी तुहानू $1,899 का मिलना है, एज ऑफ टूडे $1,599 का लैके $1,599 भी 6 महीने च पे करोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी मिलनी है, पहुंचना है तुसी जी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड, ब्रैम्पटन अपलायंसिस .com साडी वैबसाइट है, ते ब्रैम्पटन टीवी ऐप साडा टिकटॉक अकाउंट है, इनू जरूर फॉलो करना, जिन्हें भी फॉलोअर हैगे जी उन्हां नू असीं लकी ड्रॉ च पा रहे हैं, ते लकी ड्रॉ च तुसीं निंजा दा जूसर विन कर सकदे हो, ब्रैम्पटन टीवी ऐप साडा टिकटॉक अकाउंट है, ताकि तुहानू अपडेट्स भी मिलदियां रहन, 905-450-2828-905-450-2828 जी
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान जी। सो सुल्तान जी
3: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया
0: जी, थैंक यू जी। सुल्तान जी कोल सारे ने पहुंचना है ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस से, इन्निया वधिया वधिया डील्स कोई भी लोकेशन किते भी होर कोई बीट नहीं कर सकता, सो सारे ने पहुंचना है ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसेस, और भुख लग गई है सानू और वधिया वधिया डील्स लई सारे वेट कर रहे हो, सो सारे तैयार हो जाओ, तवा किचन तो साडे नाल हैगे आ किरण। सो किरण जी तुसी ऑन एयर हो।
1: कुछ स्पेशल आज तवा किचन में क्या है जी? हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी किरण जी, आपकी आवाज नहीं, थोड़ा शायद थोड़ा टेक्निकल इशू है इसके लिए। हेलो
2: हेलो,
1: आपकी आवाज आ रही है?
2: हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही?
1: ठीक, आ रही आ रही है, ठीक है, सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू है, मुझे लगता है आपका रेस्टोरेंट ऑफ काफी बिजी है, थोड़ा आप आगे पीछे कस्टमर के साथ बिजी हो। चलो किरण जी, सबसे पहले बताइए, चलो वीकेंड है, काफी सारे लोग तवा किचन के लिए वेट करते हैं, आप क्या डील्स ले आए हो, क्या स्पेशल है आज तवा किचन की तरफ से, बताइए।
2: वीकेंड पे स्पेशल, जैसे वीकेंड पे इंडिया में ज्यादा से ज्यादा घरों में परांठों की बहुत डिमांड होती है, क्योंकि वीकेंड पे हमारी छुट्टी होती है, तो हमारे पास है दो दारा सिंह परांठे की डील, जिसमें आपको दो दारा सिंह परांठा, जो कि दारा सिंह नाम ही इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत तीन चार तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्टफिंग होती है,
1: वो
2: पूरा लोडेड परांठा होता है, वो आपको दो परांठे विद दो चाय और दो दही एंड अचार सिर्फ और सिर्फ 1599 में आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ तवा किचन पे।
1: बढ़िया जी, जो बहुत बड़ा परांठा होता है, जिसने आई थिंक दारा सिंह खाया है, एक पूरा खा नहीं सकता। किरण जी, एक बार मैं आपके यहाँ पे भी आया था ट्राई करने के लिए, तो मैंने पूरा परांठा में खा नहीं पाया, चार अलग डिफरेंट टॉपिंग्स होती है जी, बिल्कुल इतने थाल की साइज का परांठा होता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी है, और दो परांठे आपको मिलेंगे, उसके साथ दो चाय, दो दही और दो अचार, ये कॉम्बो आपको 1599 में तवा किचन पे मिलेगा जी, बहुत ही बढ़िया जी। इसके अलावा किरण जी, और कुछ आज बढ़िया डील्स है?
2: हाँ, और उसके साथ साथ हमारे पास है दो अमृतसरी कुलचे
1: जी,
2: जो जिसमें अमृतसरी कुलचा फुट लॉन्ग होता है, वो छोटा सा फुट नहीं होगा
1: जी, जी,
2: वो फुट लॉन्ग है कि वो भी एक बंदा फिनिश नहीं कर पाएगा, वो फुट लॉन्ग होता है पूरा फ्रेंड, उसके साथ जो आपको लाहौरी चने मिलेंगे, जो कि बिल्कुल भी हम चाय पत्ती के साथ नहीं बनाते
1: जी जी,
2: तो उससे कोई भी गैस का प्रॉब्लम पे कुछ नहीं होगा
1: जी जी,
2: लाहौरी चनों के साथ सैलेड, इमली की चटनी
1: जी,
2: ये आपको मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 1399 में
1: जी,
2: अमृतसरी कुलचा
1: जी जी,
2: तो ये भी हमारी आज उस पे चल रही है डील, और उसके साथ साथ हमारे पास जो बहुत जाते हैं वो है पहाड़गंज के चने भटूरे
1: जी,
2: तो आपको उसमें आएंगे आपको दो प्लेट जिसमें चार भटूरे, सैलेड और चने मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 1299 में।
0: सो मैं दस दवा तुहानू जेडे पहाड़गंज के छोले भटूरे आ, ओहो लुधियाने दे स्पेशल है गया
1: जी जी,
0: सो अमन जी ऑलवेज दस दे हुंदे कि जेडे पहाड़गंज दे छोले भटूरे उत्थे दे स्पेशल, इन्हां विच तुहानू ऑयल नहीं मिलेगा क्योंकि इन्हां दी प्रिपरेशन ही कुछ इदां दी हैगी आ कि तुहानू ऑयल नहीं मिलेगा, प्लस जदों तुसी खाओगे तुहानू हैवीनेस नहीं होगी होएगी, अदरवाइज जदों असीं भटूरे खांदे आ ते बस डिनर स्किप करन दा दिल करदा या नींद बहुत आंदी है, इन्हां दे भटूरे लाजवाब, तुसी खुद ट्राई करोगे ते तुसी खुद दसोगे कि कीवें इह डिफरेंट हैगे आ, इन्हां दी प्रेपरेशन भी डिफरेंट हैगी आ, और इन्हां दी एक सब तो मेरी फेवरेट हैगी आ न्यूट्री कुलचा चौड़े बाजार वाला
1: जी जी जी,
0: सो मैनू इस बार इंडिया जदों जाना है, मैं लुधियाने भी होके आना, एक्चुअली आई एम फ्रॉम अमृतसर, सो मैनू अमृतसर दे सारे टेस्ट पता, लेकिन मैं तुहानू सारे नू बैट करदी आं, चाहे तुसी किसी भी पंजाब तो या किसी भी इंडिया की जगह तो, तुसी ए जेड़े न्यूट्री कुलचा तुसी इंडिया का टेस्ट याद दिलवा देंगे, मैं न्यूट्री कुलचा लैके आई सी रखड़ी ते साडे घरे साडे गैसट आए सीगे और सारिया ने न्यूट्री कुलचा जो खादा उन्होंने कहा कि असि डीएवी कॉलेज पढ़ते सके अमृतसर से उत्थे बाहर एक रेहड़ी वाले अंकल लगाते सके न्यूट्री कुलचा, एग्जैक्टली पंकज जी उही सी, फिर जो उत्थे असि जॉब करते सी असि उन्होंने को बंचेस च मंगवाते सी, एग्जैक्टली मेरे हसबैंड खा के भी कहते ये न्यूट्री कुलचा एग्जैक्टली अमृतसर का टेस्ट दिला रहा है, तुसी पंजाब तो इंडिया तो कितों भी हो एक बार ट्राई करो पहाड़गंज के छोले भटूरे तो न्यूट्री कुलचा, आई बैट यू गाइज गोना लव इट, सो सारे ने पहुंचना है तवा किचन, और नंबर रिपीट करो, असि नाल दे नाल होर भी बड़ी डील्स लेके आ रहे हैं तवा किचन दी,
1: सो तवा किचन आपको पहुंचना है जी 50 सनीवेल गेट पे, माउंटेनिश और बोविड रोड का इंटरसेक्शन है वहां पे, जो फोर्टिनोस के पास है उसके सामने है, तो आपको ये सबसे बढ़िया डील्स दो दारा सिंह पराठा दो चाय के साथ आपको मिलेगा 1599, दो अमृतसरी कुलचे, दो प्लेट छोले भटूरे और दो प्लेट लुधियाना जो न्यूट्री कुलचा है वो भी आपको चौड़े बाजार वाला 1299 में आपको दो प्लेट मिलेंगे, तो जल्दी पहुंचिए तवा किचन पे। संतोष जी, इनकी टैगलाइन है, इनकी प्रिपरेशन घर वर्गी, टेस्ट ढाबे वर्गा,
0: प्रेपरेशन कार वर्गी ते टेस्ट ढाबे वर्गा, ते पहुंचना कित्थे तुसी तवा किचन, और सब तो वधिया इन्हां दे प्राइस कोई भी बीट नहीं कर सकदा और टेस्ट भी नहीं, सो ट्राई करो ते तुसी सानू खुद कॉल करके थैंक्स करोगे, सो सारे ने पहुंचना है तवा किचन, और इन्हां दी लोकेशन हैगी 50 माउंटेन एश रोड, ए हैगा बोवेड ते ਟੋਰਬੈਮ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਨੀਵੇਲ ਗੇਟ ਮਾਊਂਟੇਨ ਐਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰੀਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।
1: ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 905-790-1699-905-790-1699 ਪੇ ਆਪ ਇਨਕੋ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਕੇ ਆਰਡਰ ਪਲੇਸ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੋ
0: ਜੀ,
1: ਔਰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਜਾ ਸਕਤੇ ਹੋ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿਰਨ ਜੀ, ਹਮ ਆਪਸੇ ਫਿਰ ਸੇ ਜੁੜੇਂਗੇ ਟੂ ਐਡ ਔਨ ਮੋਰ।
0: ਯਾ ਯਾ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਖਾਂ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਹਾਨ
1: ਗਿਆ,
0: ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਐਵਰੀ 6 ਮੰਥਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਏਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ। ਮੇਰੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗਲੂਕੋਮਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਈ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਲਵੇਸ ਆਲਵੇਸ ਆਲਵੇਸ ਗੈਟ ਯੋਰ ਆਈਜ਼ ਚੈੱਕ ਬਾਈ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ, ਔਰ ਰਾਜਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਏਅਰ ਹੋ।
4: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ।
0: ਜਦੋਂ ਰਾਜਨ ਜੀ ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜਾਂ ਫਰੈਂਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾ ਲਓਗੇ, ਈਵਨ ਇਫ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੋਰ ਵਰਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਓਗੇ।
4: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮਾਇਓਪੀਆ ਕੰਟਰੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨੰਬਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਡਿਟੇਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-460-8888-9054-6088-88 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸਿਸ ਬਾਏ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਐਂਟੀ ਗਲੇਅਰ ਕੋਟਿੰਗ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕੋਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਰੇਵਨ ਦੇ ਫਰੇਮ, ਅਰਮਾਨੀ ਦੇ, ਮਾਈਕਲ ਕੋਰਸ ਦੇ, ਕੋਚ ਦੇ, ਕਿਡਸ ਵੇਅਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰੇਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਫਲੈਟ 50% ਆਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਮੀ ਹਿਲਫਿਗਰ ਦੇ ਫਰੇਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡੀ ਦੇ, ਵੈਲੈਂਟੀਨੋ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲਵਿਨ ਕਲਾਈਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਲੈਟ 75% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸੌਕ ਦੇ, ਲਿਵਾਈਸ ਦੇ, ਰੈਂਕਲਰ ਦੇ, ਵੈਨਕਿਸਨ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰੇਮ ਫਲੈਟ 90% ਆਫ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। 299 ਦਾ ਫਰੇਮ ਹੈ ਤੇ 90% ਆਫ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ $29 ਚ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਫਰੇਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸੇਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ 905-460-8888। ਸਟੋਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੁਸੀਂ 35 ਰੈਜੋਲੂਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਫੋਰਟਨ ਐਂਡ ਸੀਲ ਖੈਲੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀ ਐਂਡ ਸੀਲ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਾਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜੀ 905-460-8888-905-460-8888। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
0: ਵਾਓ ਵਾਓ ਵਾਓ, ਵਾਟ ਅ ਡੀਲ, ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੂਲ ਸਾਰੇ ਨੇ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਕਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਔਰ ਰਾਜਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 905-460-8888-905-460-8888। ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਰਾਜਨ ਜੀ।
4: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਸੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਆ ਔਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ
5: वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 billion काट दिए हैं हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं आइए सरकार से कहें हमारे बच्चों में निवेश करें क्लास साइज ठीक करें एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ओंटेरियो की ओर से एक संदेश

0: ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ
1: ਫੋਰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 416-725-2551 416-725-2551
2: Canada Day Study Visa, Express Entry, Canadian Express Entry, Spousal File, Parents PR, Super Visa, Nanny, Work Permit, Farmer, Investor, या Self-Employed दी File, गल की, Immigration दी हर Problem दा Solution लैन लई, Community दे जाने पहचाने, अते तजर्बेकार Immigration Consultant, Gary Virk नू मिलो.
3: कोई केस रिफ्यूज हो गया या अपील ते चला गया, होवे Immigration दा कोई भी मसला, हमेशा याद रखो इको ही ना, अते इको ही था. CIC Immigration, हुणे ही कॉल करो, 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग लई
5: इसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वद कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381
7: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਮਜ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮਨਸਟਰ ਡਾਂਸ
8: ਟੋਰਾਂਟੋ ਗੈਟ ਰੈਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰੀਅਲਟਰ ਰਵ ਸਿੰਘ ਸੈਲੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਏ ਟੂ ਜ਼ੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਐਂਡ ਰੀਅਲਟਰ ਹਰਪ ਗਰੇਵਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦ ਸੈਂਸ

0: Friday, September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला ऐसी बड़ी मॉडल दिखती, उम्मीद कर रहा इस बार भी किसी आशीर्वाद देंगे।

करले देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो एंड टीवी थोड़े अंक संग है 24 घंटे सतो दिन हुण तक देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो हजारा ही बिजनेस की ग्रैंड ओपनिंग लाइव ऑन लोकेशन नाल करवा चुके है ते करवा रहा है इम्पॉसिबल इज नथिंग तुसी भी अपने बिजनेस विच वादा करन वास्ते देश प्रदेश रेडियो दा लाइव ऑन लोकेशन फ्राइडे सैटरडे करवाओ फॉर बुकिंग कॉल सजिंदर सिद्धू एट 416-725-2551

0: ca.
1: वेलकम टू रेडियो गोल्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, जहां सिर्फ आपके लिए है सब कुछ, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक नया और रोमांचक अनुभव, जहां होगा म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, न्यूज, टॉक शो और आपका और हमारा साथ। तो सुनते रहें रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम, क्योंकि ये है आपके साथ हमेशा। सुनहरे लम्हे और चमकती दुनिया में आपका स्वागत है, जहाँ हर लम्हा है सोने की तरह कीमती, गोल्डन मोमेंट्स की मिठास रेडियो गोल्ड के साथ।
2: स्वागत है आप सबका रेडियो गोल्ड में, और प्रोग्राम लेके हम हाजिर हुए हैं आज से नया प्रोग्राम आपके लिए। 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ। और स्टूडियोज के नंबर हैं 6479569636। सोनम की तरफ से 5 से 6 रेडियो गोल्ड आप सुना करेंगे हर रोज। कोई भी आपने बातचीत करनी है इस प्रोग्राम में, हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हम इसमें बातचीत करेंगे पॉजिटिव थॉट की, जिंदगी को कैसे बेहतर बनाना है उसके बारे में बात होगी, रियल एस्टेट की बात होगी, मॉर्गेज की बात होगी, खाने पीने की बात होगी, और उसके बाद फिर एस्ट्रोलॉजी की थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन हो सके। और साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में रितेश जी हैं। रितेश जी, स्वागत है आपका।
3: सत श्री अकाल और आदाब
2: जी। और नासिर जी भी आज स्टूडियोज में पहुंचे हुए हैं। नासिर जी, स्वागत है आपका।
4: जी बहुत शुक्रिया सोनम जी, रेडियो प्रोग्राम सुनो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और सोनम जी, पहले तो आपको भी वेलकम करते हैं,
2: रेडियो
4: गोल्ड को वेलकम करते हैं, क्योंकि आप बहुत पुरानी होस्ट हैं और इस चैनल पे आई थिंक पहली दफा होस्ट करने जा रही हैं। और
2: मैंने नासिर जी किया था 2021 में।
4: अच्छा,
2: लेकिन थोड़ी देर के लिए।
4: इस चैनल का ये फायदा, बहुत सारे लिसनर हैं जो कि बहुत सारे शौक से प्रोग्राम सुनते हैं, तो हमें ज्यादा खुशी है कि हम उन लोगों में आ गए हैं जो वाकई शौक से रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है सोनम जी, जिस तरह का नॉलेज, जिस तरह का एक्सपीरियंस आपको है एज ए होस्ट, आपने काम किया है 15-16 साल से काम कर रही है डिफरेंट चैनल्स पे, तो उसका फायदा ये होता है भी आपको बहुत कुछ सीखा हुआ है। हमें अब इंजॉय करना है आपके प्रोग्राम को सुन के, जब भी आप प्रोग्राम करेंगी तो हमें पक्का यकीन है भी आपके प्रोग्राम सुन के हमें बहुत अच्छा लगेगा और हम बड़े शौक से सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपने कोई गाने की फरमाइश करनी है, आप गाने की फरमाइश भी कर सकते हैं, क्योंकि सोनम जी के पास बहुत सारी वैरायटी है, ये पंजाबी भी बोलती है और हिंदी भी बोलती है।
2: सबसे
4: जो खूबी की बात है इनकी, ज्यादा वो ज्यादा इंजॉय करते हैं हम लोग इनके प्रोग्राम को सुन के, क्योंकि ये दोनों जुबानों में बातें करते हैं, उर्दू भी, हिंदी भी और पंजाबी भी।
2: उर्दू भी आती है
4: जी, उर्दू भी आती है, मुझे पता है, ये पक्का यकीन है मुझे। और ये प्रोग्राम अगर आप सुनेंगे तो आपको श्योर हो जाएगा वाकई कोई प्रोग्राम आ गया आपके इस चैनल पे जो कि आप सुन के इंजॉय करेंगे। और मैं एक बार फिर आपको वेलकम करता हूँ सोनम जी, 5:30 AM पे जो कि आपका रेडियो प्रोग्राम गोल्ड है जी। क्या कहना चाहेंगे आज, और पहले पंजाबी से शुरू करिए फिर।
2: हाँ जी, पंजाबी से गल
3: करते हैं। जी बिल्कुल, करने हैं पंजाबी।
4: जी सोनम जी, पहले पंजाबी बोलो।
2: बिल्कुल जी,
4: मैं अपने ना पोतरे दोतरे को कहता हूँ भाई पंजाबी बोलिया करो, बड़ी मुश्किल से बोलते हैं, अच्छा जी की करना है,
2: अच्छा जी
4: वो तुसी तो सही बोल दे हो,
3: पर कई बार बड़ी स्वीट लगती है।
4: हाँ जी बिल्कुल, हूँ सोनम जी तुसी पंजाबी किवें बोलोगे।
2: बिल्कुल जी, नासिर जी, रितेश जी, थोड़ा स्वागत है प्रोग्राम दे विच, और बिल्कुल किसे साडे लिसनर्स दा भी स्वागत है। कोई भी प्रोग्राम करना, कोई भी प्रोग्राम तुसी गीत संगीत सुनना चाहते हो, या फिर तुसी कोई गलबात करना चाहते हो, तो स्टूडियो से नंबर या फिर मेरा नंबर 4169106000 है।
3: स्टूडियो दे नंबर ने 4162337368, 416-233-7368।
2: आप फेसबुक पे जाके भी हमें देख भी सकते हैं। कहते हैं कि जस्ट लव योर सेल्फ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लव योर सेल्फ, टेक द टाइम टूडे टू अप्रिशिएट योर सेल्फ एंड टू लव योर सेल्फ। आई थिंक यू डिजर्व इट। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतनी भागदौड़ में आगे निकल जाते हैं, तो मुझे लगता है कि खुद को हम काफी पीछे छोड़ आते हैं। तो खुद के साथ समय बिताएं, टू कंप्लीट योरसेल्फ, टू ग्रो योरसेल्फ। हम सब गलतियां करते हैं, एंड डोंट पैनिक ना हो, गलतियां हम सब करते हैं. मिस्टेक करने का मतलब है टू ग्रो, खुद के साथ ग्रो करें, खुद के साथ रहें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने आप को अप्रिशिएट करें क्योंकि यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड. सो लव योरसेल्फ और प्रोग्राम यूं ही सुनते रहें. 5 से लेकर 6 बजे तक रहेगा आपका और हमारा साथ साथ साथ,
4: साथ. जी
2: एक खूबसूरत से गीत की तरफ आपको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद खबरों का सिलसिला, रियल एस्टेट न्यूज़ होंगी, डिस्कशन होगी और मॉर्गेज की बातें होंगी. दो बहुत बड़े प्रोफेशनल्स हमारे साथ हैं, लेकिन बहुत ही प्यारा सा इतना खूबसूरत गीत है, अगर हमारे लिसनर्स भी उसको सुन रहे होंगे. ये आजकल वायरल हो रहा है.
4: अच्छा.
2: टिकटॉक पे बहुत वायरल हो रहा है.
4: क्या बात है.
2: मुझे ये नहीं पता कि सिंगर कौन है, अगर हमारे लिसनर्स को किसी को पता है तो सिंगर के बारे में हमें जरूर बताएं. लेट्स प्ले द सॉन्ग. किसी शायर ने कहा है कि तुम पसंद आ गए.
4: अच्छा.
2: तुम पसंद आ गए, ये बस एक इत्तेफाक था.
4: वाह.
2: पर अब हर पसंद में बस तुम्हें पसंद हो, ये इश्क है.
3: क्या बात है.
2: तुमसे बात करने की वजह ढूंढना, फिर बेवजह तुम्हें याद करना, तुम्हारी एक मुस्कान पर दिल का यूं ठहर जाना, बस ये इश्क है.
4: क्या बात है.
2: Enjoy this beautiful song. Singer मुझे पता नहीं है. I hope you will like.

0: आप सुन रहे हैं Shine with Sonam. Keep listening and keep smiling. We'll be right back after a short break.
1: मैं रिक्वेस्ट करागा तुसी कॉल करके दसो भी कैसा गाना लग्या तुहानू। ए बड़ी तुसी कह लो बड़ी मेहनत तो बाद है सोनम जी नू गाना लभिया सी, और अपना अपना एक तो तुसी सिंगर दसो भी कौन सिंगर सी, और सैकेंड यह दसो भी तुहानू कैसा लग्या गाना। और कॉल कर सकते हो जी, कितने कर सकते जी?
2: 416-233-7368 ते दूजा नंबर
1: है। काफी जी।
2: अच्छा चलो ठीक है जी,
1: दोबारा दसो
2: 416-233-7368।
1: वाह जी वाह। तो तुसी कॉल कर सकते हो स्टूडियो और दस सकते हो भी तुहानू कैसा लग्या। और इहदे नाल मैं सोनम जी एक और गल दसदा जावां भी अगर तुसी वाकई चाहते हो कोई अच्छा बिजनेस करना और नाल अच्छी मोर्गेज अच्छे रेट पर तुहानू मोर्गेज मिले। मैं पिछले 27 सालों तो मोर्गेज कर रहे हैं, लोनस कर रहे हैं, और ऑलवेज ऑन एयर कहना भाई घूमो फिरो चैक करो और आखिर ते सानू कॉल करो। कहने का मकसद की हुंदा है, जदों तक तुसी साडे कोल आओगे तुहाडी तसल्ली होनी चाहीदी है लोग की ऑफर करते पे और असी की ऑफर करन जा रहे हैं। साडे कोल बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ने, तकरीबन ओवर 40 लैंडर्स साडे नाल काम कर रहे हैं, 40 तो ज़्यादा।
3: जी जी
1: हाँ जी, 40 तो ज़्यादा साडे नाल लैंडर्स काम कर रहे हैं, और हर लैंडर की कोशिश होंगी साडे नाल जुड़िया रहे, साडी कोशिश होंगी जो भी ज़्यादा बेनीफिट्स मिल सकते अपने क्लाइंट्स नूं दवाई जावन। और इहदे नाल नाल मैं यह कहांगा अगर तुसी कमर्शियल मोर्गेज लैनी किसी तरह की, होटल मोटल गैस स्टेशन प्लाजा लैना या प्लाजे विच कोई यूनिट बाय करना है, उनके वास्ते सानूं कॉल करो, असीं बड़ी आसानी नाल तुहानूं मोर्गेज दवा सकते हैं।
3: बिल्कुल
1: वधिया तो वधिया इंट्रस्ट रेट और वधिया वधिया टर्म्स एंड कंडीशन, यह भी दोवें साडी शर्त होंदी है। असीं दोवें तुहानूं चीज़ों का ध्यान रख के तुहानूं दवावांगे, क्योंकि साडे वास्ते जिहड़ा भी क्लाइंट साडे कोल आंदा है उह साडे सिर मत्ते ते हुंदा है, असीं कोशिश करने आं उहनूं वध तों वध बेनीफिट्स दवाईए। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਬੁੰਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਹੈਪੀ ਹੋਵਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਹੈਪੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
1: ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 647-747-9000-647-741-9000 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਗੀ, और उसके बाद कुछ मॉर्गेज के टिप्स होंगे, और फिर साथ साथ प्रोग्राम यूं ही चलता रहेगा। हमारे लिसनर्स भी, अगर साडे लिसनर भी अगर गल करना चाहते हैं, सो माय नंबर इज 416-910-6000, 416-844-6000, 416-940-0339। Or 416-233-7368 is the studio's phone number.
4: Tiho, how's your son doing?
5: Nisha, pooch mat. Sara din computer, TV, phone par laga rehta hai. Aankhe to kharab hongi hi. Homework ke time battery gul.
4: Main samajh gayi. Use chahiye prescription wale smart glasses from Clear Optical.
6: She's right. Chahe bacche ho ya bade, wear smart glasses every day. Ye prescription smart glasses aapke kharab hote vision ko stabilize kare bina kisi bhi stress and fatigue on your eyes. Visit 8005 Financial Drive, Brampton, 905-457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
7: Ritz Furniture, the message is up.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम, कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: Meet Rohit the Yes Man at Ritz Furniture Planet, 5200 Dixie Road, Mississauga. Telephone 905-232-RITZ. That is 232-7489. Visit ritzfurnitureplanet.ca. Sasta saman sasta nahi. High end the saman mile sasta.
1: The views, ideas and opinions expressed in the program are strictly that of the participants and they do not in any ways reflect the views, ideas and opinions of Radio Gold.
2: Radio Gold ki real estate market update mein swagat hai aapka. Kya aapko lagta hai ki GTA housing market abhi bhi buyers market hai? To zara rukiye. August ke aankdon mein kaisi baat chupi hai jo aane wale mahino ki kahani badal sakti hai. Market mein listings kam ho rahi hain. ट्रेप के लेटेस्ट अगस्त डाटा के मुताबिक जीटीए में पिछले साल के मुकाबले होम्स की संख्या नोटिसेबली कम हुई है, मतलब बायर्स के पास ऑप्शंस घट रहे हैं। हिडन फैक्ट है कि अक्सर लोग सिर्फ घर की कीमत कितनी है देखते हैं, लेकिन असली मार्केट सिग्नल है कितने घर बिकने के लिए अवेलेबल है। अगर इन्वेंट्री लगातार कम होती है और बायर्स वापस मार्केट में आते हैं तो प्राइसेस पर ऊपर की तरफ प्रेशर बन सकता है। इंटरेस्ट रेट सबसे बड़ा गेम चेंजर। बैंक ऑफ कनाडा ने सितंबर 2 को पॉलिसी रेट 2.25% पर रखा है, मतलब बॉरविंग इन्वायरमेंट पिछले हाई रेट पीरियड से काफी अलग है। एंड डिड यू नो इंटरेस्ट रेट में छोटा सा बदलाव भी बड़ी मॉर्गेज पर हजारों डॉलर्स के एनुअल इंटरेस्ट डिफरेंसेस में बदलाव ला सकता है। इसलिए रियल एस्टेट में सिर्फ प्राइसेस कम हुए या बड़े मत देखिए, मंथली कैरिंग कॉस्ट भी देखिए। कॉन्डो बायर्स के लिए कहानी थोड़ी अलग है। अगस्त में जीटी कॉन्डो अपार्टमेंट का एवरेज प्राइस लगभग 617,593 रहा, जो साल दर साल करीब 3.8% नीचे था। सेल्स भी लगभग 2.8% लोअर रही, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। बैंक ऑफ कनाडा के एनालिसिस के अनुसार टोरंटो कॉन्डो मार्केट को पॉपुलेशन ग्रोथ ने स्लो डाउन और हायर इंटरेस्ट रेट ने प्रभावित किया है, जिससे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न पहले जैसे अट्रैक्टिव नहीं रहे हैं। हिडन फैक्ट है कि हर सस्ता कॉन्डो बार्गेन नहीं होता। कभी कभी कम प्राइस के पीछे हाई मेंटेनेंस फी, वीक रेंटल इकोनॉमिक्स या फिर ओवर सप्लाई भी हो सकती है। डिटैच होम्स अभी भी अलग गेम खेल रहे हैं। अगस्त में जीटीए डिटैच होम्स का एवरेज प्राइस लगभग 1.2 मिलियन था और ये सेगमेंट कॉन्डो की तुलना में ज्यादा प्राइस रिजिलेंस दिखा रहा है। मतलब जीटीए को एक सिंगल मार्केट समझना गलती है। डिटैच प्लस कॉन्डो प्लस टाउन होम्स, हर सेगमेंट की अपनी अलग कहानी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सितंबर अक्टूबर में मार्केट अचानक बूम करेगा? जरूरी नहीं, लेकिन अगर इन्वेंट्री कम होती रही, बॉर्विंग कंडीशंस मैनेजेबल रही प्लस बायर्स वापस आते रहे तो सेलर्स की नेगोशिएटिंग पावर धीरे धीरे बढ़ सकती है। आपको शायद पता नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट में प्राइस अक्सर आखिरी चीज होती है जो बदलती है। पहले बदलता है इन्वेंट्री, फिर बायर्स एक्टिविटी, फिर डेज ऑन मार्केट, फिर नेगोशिएशन पावर और फिर प्राइस। इसलिए अगर आप सिर्फ सोल्ड प्राइसेस देख रहे हैं तो हो सकता है आप मार्केट का एक पहलू पढ़ रहे हैं, पूरी किताब नहीं। घर खरीदना हो या बेचना, हेडलाइंस नहीं हिडन नंबर्स पढ़िए, क्योंकि रियल एस्टेट की असली कहानी नंबर्स के पीछे छुपी होती है। सुनते रहें रेडियो गोल्ड।
3: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें। तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800।
1: सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड। फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com। कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग।
2: वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम, स्वागत है आप सबका। चलें थोड़ा सा खाने पीने की बात करते हैं, फिर उसके बाद रियल एस्टेट मार्केट की न्यूज जो आपने सुनी है उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। लेकिन लेट्स टेक ओपन माइक कैफे और नासिर जी हमारे साथ हैं। जी
4: जी बहुत शुक्रिया सोनम जी, ते बड़ी खुशी हो रही है, तुसी बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश कर रहे हो। ਔਰ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵਧੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚਿਕਨ ਕੜਾਈ ਜਾਂ ਗੋਡ ਕੜਾਈ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਨਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਬਾਬ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਪੜੋ ਜਾ ਕੇ, ਓਪਨ ਮਾਈ ਕੈਫੇ ਐਂਡ ਕੁਜ਼ੀਨ 'ਤੇ ਜਾਓ, OMCC 'ਤੇ

0: होना तो यार कॉम्पिटिशन थोड़ा बढ़ गया, कॉम्पिटिशन बढ़ने के प्राइसेस में तो थोड़ा सा डिक्लाइन जी होगा, पहले थोड़ी सी ज़्यादा होगी सर होम ही घट गई, बट एक जी चीज़ मैं तुम दसा ना डिटैच होम एवरेज प्राइस वो पहली बार 1 मिलियन तो थोड़े आया है।
1: अच्छा डिटैच हो
0: क्या बात है,
1: इतनी थोड़ी प्राइस
2: बट ये हुण बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहना।
3: अच्छा जी,
2: तो होर अगले 6 महीनों के जिस तरीके ना मार्केट टाइट हो रही है
3: जी,
2: तो यह लगता यह है भी जिहड़ा प्राइस है वो स्टेबल हो जाएगा।
3: अच्छा,
2: तो फिर जिहड़ी नॉर्मल ग्रोथ है रियल स्टेट की 3-4% वाली उस पासे नूं टुर पेगा।
3: तो तुसीं हुण इस मौके ते की मशवरा देंदे हो भी अगर किसी ने बाइंग करनी है राइट टाइम है या रोंग टाइम है
2: फॉर बायर्स? इट्स अ राइट टाइम।
3: अच्छा जी,
2: वेरी वेरी गुड टाइम, क्योंकि अदरवाइज जे होर वेट करते रहे उधरों इंटरस्टेड ट्रंप जी भी सह नहीं लै रहे, टैरिफ अपने से लग रहे ने, इनफ्लेशन वधेगी उनके नाल। जो इनफ्लेशन वधेगी तो इंटरस्टेड भी जाहिर है थोड़ा जहा होर वधेगा।
3: अच्छा जी,
2: तो आप इंटरस्टेड भी उपर चला जाना है, रेट्स भी उपर जाने शुरू हो जाने हैं, तो वो जो टाइम है ना उदो फिर भजदौड़ पै जानी है

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. अगर आपके बाल बहुत जल ड्राई और फ्रिजी हो गए हैं और बहुत गिरने लग गए हैं, उनमें ग्रोथ नहीं हो रही, तो यूज करें फ्रेश हेयर ऑयल. और साथ साथ अगर आपके फेस पे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, स्किन डल है, एक्ने है, तो यूज करें फ्रेश लुक क्रीम, स्क्रब्स एंड टोनर्स विद एक्सलेंट रिजल्ट्स. और अगर साथ में हील्स में क्रैक पड़ गए हैं, तो सभी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए कॉल करें जफर मलिक 647-521-5159. बुक ऑर्डर एंड गेट फ्री डिलीवरी. वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. स्वागत है आप सबका. और बिल्कुल चले हेयर ऑयल. अगर आपको भी खूबसूरत बनना है, अपने बालों को सुंदर बनाना है, तो फ्रेश हेयर ऑयल आपको लेना पड़ेगा. और जफर जी हमारे साथ हैं. जफर जी स्वागत है आपका. हेलो जी. जफर जी स्वागत है आपका. कैसे हैं?
1: मैं ठीक हूँ. आप बोलें, क्या पूछना चाह रहे हैं?
0: जी बिल्कुल. अच्छा,
1: टॉनिक है, उसके बारे में कोई बात करनी?
0: हाँ जी हाँ जी. हेयर ऑयल दी गल असी अक्सर कर दे हैं, और बहुत सारे लोगों की आजकल प्रॉब्लम है कि बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं. आई डोंट नो, एक ता आजकल डिप्रेशन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, और देयर आर सो मेनी अदर रीजंस. ते तुहाडे कोल एक जड़ी बूटी है, एक ऐसा टॉनिक है जिहड़ा रीग्रोथ कर सकदा है बालां नूं, तो प्लीज साडे लिसनर्स नाल शेयर करो.
1: देखो जी, वाल खुश्क हो जांदे ने, सुक जांदे ने, ते तुहाडे पोर च नहीं रुकदे.
0: हां,
1: ओ पानी दी वजह, दवाइयां दी वजह, कलर करन दी वजह, या किसी होर वजह तों वी तुहाडे वाल जदों सुक जांदे ने, ते ओ पोर च नहीं रुकदे, तुहाडे वाल झड़न लग पैंदे ने.
0: ओके,
1: फ्रेश हेयर टॉनिक तुहाडे वालां नूं झड़न तों रोकदा ही नहीं, वापस सुगांदा भी है. इक्की वरे हो गए कैनेडा तुसी बनांदे आ, तुहानूं दिंदे आ, फ्री शिपिंग तुहाडे घर पहुंचाने आ, यानी कोई पैसे शिपिंग दे तुहाडे कोल चार्ज नहीं किए जांदे. तुसी किसी जगह भी मंगाओ, कैनेडा च असीं तुहानूं पहुंचा देंगे. रह गई गल एक की करदा, एक कितनी गारंटी है, ये भी लोकी बाकी गल्लां पुछदे ने. गल इस तरह है कि 70% तो साडे रिपीटेड ऑर्डर है ही ने.
0: ओके,
1: जेडे रेफरेंस दे नाल लोकी आंदे ने, फॉर एग्जाम्पल मैं एक घर ही पहुंचाए ने, ते अगर ओदी भाभी ने इस्तेमाल कीता, अगर ओदी नन ने, ते जरूर लिता ना. पर अगर किसी होर ने वरत्या, ते इसे तरह तुहाडे दोस्तां सज्जनां ने भी लिता
0: जी,
1: ते साडा फ्रेश हेयर टॉनिक कैनेडियन प्रोडक्ट होण दे नाल तुहाडे घर पहुंच के तुहाडा इलाज कर देवे, कि तुहाडे वाल झड़न तों रुक जाण, वापस उगदे वी नजर आ जाण, ते फिर काम ठीक है ना.
0: बिल्कुल,
1: गल ते इन्नी सारी गल है.
0: बिल्कुल जी. और आजकल इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बाल होन ते चेहरा वैसे खूबसूरत, बाल सुंदर होन ते पर्सनैलिटी थोड़ी चेंज हो जाती है. और बालों नू खूबसूरत रखन लई उनू ऑयलिंग करनी, स्टीम करनी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. और जे तुहानू अच्छा ऑयल मिल जाए, ते बाल ऑटोमेटिकली रीग्रोन ग्रोथ होने शुरू हो जान, ते फिर गल ही की है. 647-521-5159 नंबर है, इस नंबर ते कॉल करो. और कॉल करके जरूर इस हेयर ऑयल दे बारे च इन्फॉर्मेशन लो. तुसी किसे भी कैनेडा दे कॉर्नर च बैठे हो, एंड द प्लस पॉइंट इज कि तुहानू फ्री डिलीवरी है. मैंने जफर जी अपने वालों कह दिता, बट इज इट ट्रू?
1: बिल्कुल. ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂ ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਲੋਪੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਾਈਸਿਸ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੋਵੇ, ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਲਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਝੜਦੇ ਹੋਣ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ.
0: 521-5159-647 एरिया कोड है, इस नंबर ते कॉल करके तुसी अपने बालों नू ग्रो करन ली, या फिर मोस्टली विंटर इज कमिंग, इट्स अराउंड द कॉर्नर. बहुत सारे लोगों नू विंटर दे विच ड्राई स्किन हो जाती है, या फिर सम रीजन ब्लैमिशेज फेस ते हो जाते हैं, ते बहुत ही वधिया ब्लैमिशेज रिमूव करन ली क्रीम है जिहड़ी तुसी लै सकदे हो. सेम नंबर ते कॉल करके ब्लैमिशेज ली क्रीम लैनी है, फेस नू क्लीन करने ली क्रीम लेनी है, या फिर हेयर ग्रोथ ली, 647-521-5159 6475215159. जी जफर जी, बहुत शुक्रिया.
1: एनीथिंग एल्स? गुड लक जी.
0: थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और चले रितेश जी, क्विकली थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं, पंजाबी टू हिंदी, हिंदी टू पंजाबी. थोड़ा सा बताएं प्लीज रियल एस्टेट का.
1: मैं बताऊं?
0: बिल्कुल जी. और कोई भी इन्फॉर्मेशन तुसी लेना चाहते हो, 416-844-6000 नंबर है रियल एस्टेट रिगार्डिंग, 416-844-6000. नासिर जी, नाल ही रियल एस्टेट की गल हो रही है, सो रियल एस्टेट ता ही सक्सेसफुल हुंदी है अगर मॉर्गेज अप्रूव होएगी. विदाउट रियल मॉर्गेज, रियल एस्टेट दी जिहड़ी वैल्यू है वो जीरो हो जाती है. सो व्हाट डू यू वांट टू से?
2: देखो जी, मॉर्गेज वास्ते बहुत जरूरी है तुसी मैनू कॉल करो, 6477419000 ते कॉल करो. 3 मिनट लगेगा, 3 मिनट ही दस देगा तुहाडी मॉर्गेज होनी है नहीं होनी. अगर होनी है तो कितों होनी है? वो बेशक कमर्शियल मॉर्गेज है, बेशक रेजिडेंशियल मॉर्गेज है, दोवें असीं मॉर्गेज काफ़ी सालों का कर रहे हैं. पिछले 27 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, 27 सालों तो भी ज़्यादा हो गए ना. अगर तुसी लगे रहते हो ना किसी काम में, लगे रहते हो कुछ ना कुछ सीखने रोज़ मिलता है. असी उही गल की है, रोज़ असी सीख के कोशिश करने भी जो भी ज़्यादा ज़्यादा बेनीफिट्स अपने क्लाइंट मिल सकते हैं, असी दवा की कोशिश करने. कोई भी तुसी कमर्शियल मॉर्गेज लैनी है, होटल, मोटल, गैस स्टेशन, प्लाजा लैना है, या प्लाजे विच कोई यूनिट बाय करना है, उनके वास्ते कॉल करो, 6477419000 ते कॉल कर सकते हो. और अगर एक लेडीज़ वास्ते लोन आया 50,000 तो लैके 1,00,000 तक, अगर मावां धीआं भैणां वास्ते खुशखबरी, तुसी चाहुंदे हो घरों बह के काम करना किसी तरह का, तुसी केटरिंग का काम कर लो, तुसी ज्वेलरी कपड़े का काम कर लो, तुसी ब्यूटी पार्लर का काम कर लो घरों बह के, अगर तुसी चाहुंदे हो काम स्टार्ट करना, तो उन्हां वास्ते खुशखबरी, सानू 50,000 तो लैके 1,00,000 तक दवा सकते हैं. शर्त एक ही है, तुहाडा क्रैडिट सही होना चाहिए. अगर क्रैडिट 700+ वीकन स्कोर है तो कॉल करो 6477419000. और अगर तुहानू पैसे की एमरजेंसी जरूरत पै गई है, असी बड़ी आसानी अप टू 1,000,000 दवा सकते हैं. अगर तुहाडे घर च इक्विटी है, अगर इक्विटी पई है तो बड़ी आसानी 24 घंटे के सोना जी, 24 घंटे के अप टू 1,000,000 दवा सकते हैं. हुण तुसी आपे हिसाब ला लो भी 1,000,000 दवाना होवे किन्ना औखा काम है. और ना ही सानू जाब दी इनफॉर्मेशन चाहिए, ना ही तुहाडी कोई इनकम कुछ भी चाहिए, ना सानू कोई क्रेडिट तुहाडा सही चाहिए. सिर्फ और सिर्फ तुहाडा जरा इक्विटी होनी चाहिए, असी पैसे कढ के दे सकते हैं. और पैसे कढ के तुसी दूजी प्रॉपर्टी बाई कर लो, कोई भी तुसी कमर्शियल बेशक प्रॉपर्टी बाय कर लो, बेशक कार बाय कर लो. तो अगे जिवें असीं कह रहे सां, कमर्शियल दी भी बाइंग टाइम है. मेरा ख्याल है कमर्शियल प्रॉपर्टी तुसी बाय करोगे तुहाडा पैसा कदी भी डुबेगा, ऑलवेज तुहानू वो पैसे दे के जांदी है. तो कमर्शियल प्रॉपर्टी भी तुसी सोनव जी नूं भी कॉल कर सकते हो, 416-910-6000 ते कॉल कर सकते हो. अगर कोई भी तुसी जानकारी लैनी है कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे च, तो मॉर्गेज तुहानू असीं 3 मिनट दस देवांगे भी तुहाडी मॉर्गेज होनी है या नहीं होनी. जी सोनव जी,
3: मैं नासिर साहब तो 2012-2013 च अपना लोन करवाया सी. ते इन्हां दी खासियत यह है, ये पहला समझते ने कलाइंट नूं समझते ने, फिर इन्हां दे प्रोडक्ट जिहड़े ने सारे जिन्ने प्रोडक्ट ने इन्हां कोले सारे दिमाग च ने, जहन च ने, ते उहदे नाल मैच कर लैंदे ने. ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਲਵੇਸ।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
2: ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ 12-13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤੀ।
0: ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ 100% ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ,
0: 99.9% ਡਜ਼ ਨਾਟ ਵਰਕ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਗਿਵ 100%, ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ।
2: ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੂ ਜੀ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਈ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਹੈਂਡੀ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
0: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਇਹ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 6477419000 ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟਰਨ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ,
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਨ ਕੇ ਲਈ 4162337368 ਵਿਲ ਗੋ ਫੋਰ ਅ ਸਮਾਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।
2: ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਵੀ ਮੋਰਗੇਜ ਦੀ, ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਲੋ
3: ਨੇ,
2: ਲੋਕ ਘਬਰਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ,
3: ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ।
2: ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੋ।
3: ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ,
2: ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
3: ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ।
2: ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸਾਂ, ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੈਲ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ।
3: ਬਿਲਕੁਲ,
2: ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਕੱਲ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਣਨ ਲੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੇ।
3: ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਰਹੋ
2: ਜੀ
3: ਤੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਕਦੇ।
2: ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਨਮ ਜੀ,
0: ਬਾਤਚੀਤ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਕੀ ਔਰ ਹਮਾਰੀ, ਔਰ ਸਾਥ ਸਾਥ ਥੋੜੀ ਸੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਲੇ
2: ਜੀ,
0: ਸੋਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੋਂ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਕੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਮੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜਬ ਹਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬਾਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਤੋ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ, ਜੈਸੇ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਮੇਂ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਤੋ ਆਪਣੇ ਕਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੋ ਯੂ ਐਡ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇਨ ਦੈਟ, ਤੋ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਆਪਕੋ ਵਹਾਂ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਰਾਸਤੇ ਮੇਂ ਅਗਰ ਕਹੀਂ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਖੜੀ ਹੈ, ਯਾ ਕਹੀਂ ਪੇ ਕੁਛ ਖੱਡਾ ਹੈ ਯਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੋ ਜੀ ਪੀ ਐੱਸ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਬਤਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਟੇਕ ਅ ਰਾਈਟ ਟਰਨ ਔਰ ਲੈਫਟ ਟਰਨ ਔਰ ਚੇਂਜ ਅ ਵੇ, ਤੋ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ, ਅਗਰ ਆਪ ਕਹੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਔਰ ਆਪਕੀ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਕੋ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੋ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਵੇ ਟੂ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਲਾਈਫ, ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਪਾਸਟ, ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਰ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਫਿਊਚਰ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਹਮ ਆਗੇ ਚਲ ਕੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇਂਗੇ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ 4162337368।
4: ਔਨ ਸਟਾਰਸ ਯਹਾਂ ਹਮ ਕਰੇਂਗੇ ਸਿਤਾਰੋਂ ਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋ ਸਮਝਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਮਾਨ ਮੇਂ ਚਮਕਤੇ ਸਿਤਾਰੇ ਸਿਰਫ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਵੋ ਆਪਣੇ ਭੀਤਰ ਕਈ ਰਹੱਸਯ ਸਮੇਟੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿਓ ਕੀ ਚਾਲ, ਨਕਸ਼ਤਰੋਂ ਕੇ ਸੰਕੇਤ, ਜੋਤਿਸ਼ ਸਾਇੰਸ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਰਹੱਸਯ ਔਰ ਉਨਕੇ ਹਮਾਰੇ ਜੀਵਨ, ਕਰੀਅਰ, ਸੋਚ, ਰਿਸ਼ਤੋਂ, ਫੈਸਲੋਂ ਔਰ ਭਵਿਸ਼ਯ ਪਰ ਪੜਨੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਤੋ ਆਈਏ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਕੀ ਇਸ ਅਦਭੁਤ ਯਾਤਰਾ ਪਰ ਸਾਥ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਭੀ ਕਭੀ ਜਵਾਬ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿਤਾਰੋਂ ਮੇਂ ਛੁਪੇ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸਿਤਾਰਾ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਕੀ ਵੀ ਹੋ, ਤੋ ਚਲੇ ਸਿਤਾਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੀਏ ਔਰ ਖੁਦ ਕੋ ਸਮਝੀਏ। ज्योतिष क्या है, एस्ट्रोलॉजी क्या है? यही एक ऐसी विद्या है जो बताती है कि जीवन में जो हुआ, जो हो रहा है या जो होगा वो निश्चित है। इसलिए अगर आप दुखी हो तो अज्ञानता से दुखी हो, सुखी हो तो वो तय हो चुका है। ये ज्योतिष ही बता सकती है, लेकिन कई हजारों में कुछ चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें इसका सही ज्ञान है, लेकिन बताने वाले लोग बहुत हैं। ज्यादातर लोग अनाड़ी हैं ज्योतिष की विद्या को लेकर। ज्योतिष के इतने पार्ट हैं तो कन्फ्यूजन बहुत हो जाता है। जो भी ज्योतिष की आगे ब्रांचेस हैं या पार्ट हैं वो ऐसे हैं कि जैसे खांसी आए तो अदरक शहद खाकर ठीक हो जाओ। इसलिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स की ब्रांचेस हैं उसमें खांसी तो ठीक हो जाती है, लेकिन अगर निमोनिया हो जाए, टीवी हो जाए या कोई भयंकर बीमारी हो जाए तो अदरक शहद के ड्रम में भी खांसी नहीं रुकेगी। तब क्या होगा? तब स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा। वो डीप में जाकर बीमारी का इलाज ढूंढेगा। ऐसे ही जब लाइफ में प्रॉब्लम्स हों, समझ ना आए, चारों तरफ ब्लैकआउट हो जाए, तो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेशंस करके साइंटिफिकली गहराई में जाकर आपको एस्ट्रोलॉजी और हस्त रेखा के जरिए सब कुछ बता सकता है। सबसे मुश्किल पामिस्ट्री है। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, आपकी जिंदगी इसके जरिए जानी जा सकती है, इसमें कोई तुक्का नहीं लगता। ये प्लैनेट्स, ज़ोडियक साइंस और नक्षत्रास की कैलकुलेशन है। तो सही स्पेशलिस्ट प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकता है कि आपके आने वाले टाइम में, जिंदगी में या फिर आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। और अगर आपका भाग्य अच्छा है, आपके प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है, तो ही आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढ सकते हो या फिर एस्ट्रोलॉजर आपको ढूंढ लेगा। तो अगर आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए तो वो डॉक्टर्स या लॉयर की तरह आपकी जिंदगी में काम करता है। तो आने वाले टाइम में इसके बारे में और नॉलेज आपके साथ शेयर होती रहेगी। सुनते रहें रेडियो गोल्ड।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। 6:02 हो गया जी। रेडियो अंदाज लैके मैं थोड़ी होस्ट परम हाजिर हो चुकी हाँ। मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी एंड खुश आमदीद एंड स्वागतम।